0: सब कोए, सुध क्यों कर रखिए सुध पर सोए, नानक सुध के न उतरे ज्ञान उतरे।
1: मन का सुतक लोभ है जेवा सुत।

पौड़ी सब को आखे अपना सुनाई सोचन कढ़ी है किता पो अपना पहले खा संडी है जा रहना नहीं है तो जगदा कायत गार भंडी है मंदा किसने आखिए पड़खर बूझी है मूर्खे नाल ना लूझी है मूर्खे ना।

पौड़िया पे ही कणा क्यों कला पे ही तय तारी है। देखे किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है को साहे मन विसारी है। अपना थी अपना आपे ही काज सवारी है।

पौड़ी नानक अंत न जपनी हर ताके पारावार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरिया तुलही चरे बसियार आप कराए करे आप हों कैसे हों करी पुकार नानक करना जिनकिया फिर तिसी।

पौड़ी बड़ी हो बढ़ाया पार तेरा मर्तबा, रंग प्रंग नेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किस जान दा, सब किस तेरा वस तेरा कर भला, तेरे घर आनंद बधाई तुद घर माण महत्ता, तेज अपना आप जर सर्व कला पर।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू काटे काटे अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते।

भगत से भगत भले जन नानक जी जो भावह मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वाडे अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई। तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई। रहाउ सब तेरी तू सब नी त्याया जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना यह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोई। तू कर कर वेखह जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ै भई ले निवासा पाणी पावक तिनह किया। पंक जो मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबियाले। मन एक न चेतस मूड़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाउ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा भई परापत मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाउ

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमारी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमारे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संघरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है, चुन चुन सत्र हमारी मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारी पच्छा, श्री अस तुज जू करी अहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंब। ताका मूढ़ उचारत पिता, जाको पीव न पावत बिदा। ताको कर पाहन अनमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही भूपा।
अंडज जेरज सेतज कीनी ओत पोज खान बहरे रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आदि जुगादि स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगर हो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारी तिनके तुम संकट सब टारी। जो कल को एक बार त्यै है ताकि काल निकट नह है। रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दा

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं

बोलो जीवा हे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुर नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। राम दासै हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो स्मराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर स्मरे है घर नौ निध आवै ताए। सब थाई हुई सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुई सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा

चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरियायत। देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत।

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहायदा तार जियो, श्री ननकाना साहिब आते होर गुरु।

तोरक मुए सिर नाई ओए ले जारे ओए ले गाडे तेरी गात दुहु न पाई बुत पूज पूज हिंदू मुए

मन रे संसार अंध गहिरा चहो दिस पसरियो है जाम जेवरा रहाओ कबित पड़े पाड़ कबिता मुए कपड़ केदार जाई।

सबको माया मोह परम पैपुले सुत दारस्यों एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जाम त्रास मिटाय एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाय एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाय सो कहो टल गुर सेविया अहन सुसहज दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख

सबना दा विसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी जब जरिया तब होए भस्म ताना रह करम दल खाए काचे गागर नीर परत है या तन की यह बड़ाई जब जरिया तब हुए भस्म ताना रह करम दल खाई काची गागर नीर परत है या तन की यह बड़ाई काहे भैया फिरता फूलिया फूलिया जब दस मास उर्दमुख रहता सो दिन कैसे भूलिया रहा ज्यों मधमाखी त्यों सठोर रासा जोर जोर धन किया मरती बार लेहो लेहो करिया भूत रहन क्यों दिया देहरी लौ बरी नार संग पई आगा सज्जन सुहेला मर कट लौ सब लोग कुटुंब भयो आगा हंस अकेला कहत कबीर सुनहो रे प्राणी परे काल ग्रस कुआ झूठी माया आप बंधाया ज्यों नलनी भ्रम सुआ कहत कबीर सुनहो रे प्राणी परे काल ग्रस कुआ झूठी माया आप बंधाया ज्यों नलनी भ्रम सुआ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्त काया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वर है सर्व रखिया गुरदयाल है भय दुख विनाशन है भगत वत्सल नाथ नाथी शरण नानक पुरख चित्त है बिलावल महला पंजवा ताती बावन लगई पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारा राम कार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन मनत बनाई राम नाम खदिया कल बुलाई राओ राख लिए तिन रखनहार सब याद मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रभ भई सहाय सोहेला रा गौड़ी देवकी महला पहला

मुख कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे नानक दास इहा सुख मांगा मुख कर संतन की तूरे

साहिब जी प्रताप सदा गुरु का घट घट प्रगास भया जस जन कै इक पढ़ै सुनै गाम है प्रभात है करहै इस्नान इस्नान करहै प्रभात शुद्ध मन गुरु पूजा विद सहित करं कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं।

जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर्व बिद वर्णन। सत गुर गुर सेव अलख गत जाके श्री रामदास तारण तरण। समरथ गुरु सिर हथ धरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अघन हरियो।

कुदरत साजी क्रियासन डिठो चाओ दाता करता तू तुसे कृप साओ तू जानो सब दिल से जिन कवाओ कार्यासन डिठो चाओ कार्यासन।

बौद्ध दिग्दर्शक ने हाथ मिलाया, अग्नि कीर्तवाद्य पहले का कर समझाया।

संतोख सरोवर बसे, अमे रस रसन प्रकाश है, मिलत शांत उपजे, तुरत दुरंत नाशे, सुख सागर पायो तेंत, हर मगन हुटे, संजम सत संतोख, सील स्नह मुफुटे, सतगुर प्रमान विदने सरयो, जग जस तुर बजायो, गुर रामदास कल उचरे, तै अपे अमर पद पायो, जग जितो सतगुर प्रमान मन एक त्यायो, तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिलायो, नवनिध नाम निदान रिद सिद्ध ताके दासे, सहज सरोवर मिलियो पुरख पेट्यो अविनाशी, आदले पवत जित लागत रहे, सो गुर नाम दृढ़ायो, गुर रामदास कल उचरे,

जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारण अमृत बूंद हर नाम विष की बिखे निवारण सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत।

0: सतगुर नाम एक ले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पापु कहो कत होवै जियो। तारण तरण खेण मात्र जाको दृष्टि तारे, शब्द रत विचार है काम क्रोध खोवै जियो। जियन सबन दाता अगम ज्ञान बिखे आता, एन सत्यान तावे पलक न सोवै जियो। जाको देख दरिद्र जावे नाम सो निदान पावे, गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो। सतगुर नाम एक ले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो।
1: प्रेम भगत परवा प्रीत भुबली ना हुट्टै, सतगुर शब्द अथा अमेर तारस गुट्टै। मत माता संतोख पिता सर सह समायो, आयुनी संभवयो जगत गुर बचन तरायो। अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो। गुरु रामदास कल उचर तें जगत उदारन पायो। अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो। गुरु रामदास कल उचर तें जगत उदारन

है। जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाच शब्द सार एक दिवलाई है। उन जाने को तेरा अपार निरपो निरंकार कत कतनहार तुझे बुझाई है। परम पुले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना डंड काल गुरमत त्याई है। मन प्राणी मुगद विचार एह निस जप।

आए हो सिफत खसमदी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दसाहु जिस पास बैठे आसुहिया सब नादा वेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दसाहु जिस पास बैठे आसोहिया सब नादा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वडहंस महला तीजा एहो शरीर जजरी है इस नौ जार पहुँचे आए गोरे राखे से उबरे होर मारे जम्मे आवे जाए एहो शरीर जजरी है इस नौ जार पहुँचे आए गोरे राखे से उबरे

सच्चरे नाम समाई सच्चे नाम समाई हर गुण गाए मिल प्रीतम सुख पाई सदा आनंद रहै दिन राती विच हौ मैं जाई जिनी पुरखी हर नाम चित लाया तिन कै हौ लागौ पाई काया कंचन तां थीऐ जा सतगुर लय मिलाई सो सच्चा सच सलाहीऐ जे सतगुर दे बुझाए बिन सतगुर भरम भुलाणिया क्या मोह देसन आगे जाए क्या दीन मोह जाए अवगुण पछुताए दुखो दुख कमाए नाम रतिया से रंग चलूला पिर कै अंक समाए तिस जीवड अवर न सूझई किस आगे कहिए जाए सो सच्चा सच सलाहीऐ जे सतगुर दे बुझाए जिनी सच्चड़ा